सचे नाम की तिल वडयाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट न जाय। ना

वहो सुखी बस मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर द करिय सब बैरन कौ आज संगरिय पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हे शाड कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्तर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निबरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज

शंकर एकैठ सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव याद जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो।

दुष्ट दुख तेलेहो बचाई सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया परपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रखे और तारो

तेग फतेह भरत की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बलो जी वाह।

अजुन्नीसभं गुरुप्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तों साहिब गुणी निधन्ना तुम्हारी महिमा वर्णन न सकूं

जिस पास बैठिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ देव गंधारी। अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। रहाउ लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहाओ भावे बुरा कहाओ, हम तन दियो है टार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखहु कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखहु लाज मुरार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राख

हादरा हदूरा कथना कथि न आवै तोट काथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या भाव अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहा के बोलन बोलिया जित सुंतरे प्यार अमृत वेड़ा सच नाओ वड़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोह द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न हो आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिया मनखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई जे हौ जाड़ा आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा इक देह बधाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीरथ नावा जे तिस पावा बिन भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन करमा के मिलै लई मात विच रतन जवाहर माणिक जे कु गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जु बिचारे आर जा होर दसूणी हो हे नवा खंडा विच जाणिया नाम चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिसन दन आवई तवा तन पुछै के कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत तवर आकाश सुणै दीप लोह पाताल सुणै कोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै ईसर वर्मा इंद सुणै मुखसा लाहण मंद सुणै जोग जुगत तन भेद सुणै सास सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै सत संतोख ज्ञान सुणै अड़सठ का स्नान सुणै पढ़ पढ़ पावह मान सुणै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै सरा गुणा के गाह सुणै सेख पीर पाते साह सुणै अंधे पावह राह सुणै हाथ वैस गाह नानक भगता सदा विगास सुणै दुख पाप का नास मने की गत कही ना जाए जे को कह पिछै पछताए कागद कलम न लिखन हार मने का बह कर विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन होए मनै सुरत होवे मन बुद्ध मनै सगल भवन की सदा मनै मोहि चोटा ना खाए मनै जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक ना पाए मनै पथ प्रगट जाए मनै मगन चलै पंथ मनै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै पावह मुख द्वार मनै परवार साधार मनै तरै तारे गुरसिख मनै नानक वह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाणै मन कोए पंच प्रवान पंच प्रदान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह हे दर राजान पंचा का गुर एक त्यार जे को कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जे को बुझै हुए सत्यार तबला उपर किता पहार धरती होर परै होर होर तिस्ते पहार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाणै कोए
ਲਿਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਹੋ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤੇ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤਾ।

सर्वंकर है, सर्वंकर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करुणाकर है, विश्वंकर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खालखंडस है, पारते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, तपा तप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणाकृत है, अकृता कृत है, तरणी कृत है, वितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विषम पर है, करुणाल है, निपनायक है, सर्वपायक है, पवन जन अरगंजन है, रेप तापन है, जापु जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, कर्ता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्मवस है, जस के जस है, उजांग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादूते, अलक अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आसे आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगे कामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी नकामे, एक अक्षरे छंद, अजय अलय अभय अभय, अभू अजू अनास आकाश, अगंज अभंज, अलख अपख, अकाल दयाल लेख पेख, अनाम अकाम, अगाह अटाह, अनाथे परमाथे, अजो नियमो ने, न रागे न रंगे, न रूपे न रेखे, परमंग करमंग अकर्मंग, परमंग गंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तल प्रणामे, समस्तल प्रणासे, अगंजुल नामे, समस्तल निवासे, निरकामंग विपूते, समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सतर्मंग विपूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करी मूर्ख निंदा, समस्तल निवासी, अजाय विपूते, गजाय विगनी में, हरियंकरी अंकरी मूल ही में, चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते, स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते, नुकाल प्रणासे दयाल स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विभूते, दुकाल

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात बिचारे पौन के गौन को जात बिचारे जीत फिर सब देश दिसान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के थाम सिदारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बिसिखै भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन हार जति जत तार सबै सो बेचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन पूपत एकृति बिन एक न लिखै सौद सिपाह दुरंत दुबाह सुसा सनाह दुर्जान दलै गे भारी गुमान परे मन मै हर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर रीन मरूर मवसन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अविचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासना माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायका जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव अपने दिन साचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मै थर मै पल ही पल मै सब थाप तपेंगे पौन प्रतापन बाढ़ जैत तोना पापन के बहु पुंज खपेंगे सार समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक छपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र न राधप जौंत लोक राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक सोमवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत से जम फास परेंगे जेना श्री

साचे साहेबा क्या नहीं करते राय, करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावै, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मना वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संत हो, शब्द त्रो प्यार हो, साचा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द तित कर सुपागै, कर सुपागै शब्द वाजे, करा जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन का से नाम हर कह लागे, कह नानक तस खोआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणे, देह निमाणे लिवै बज हो, क्या करे बेचारिया, तुद बाज समर्थ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, इस ना होर थाव नाही, शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बज हो, क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जन का मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया, कह नानक यो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै तसो जन देह जिसन और क्या करे बेचारिया, एक परम भूली फिर दै दे सिख नाम लाग सवारिया, गुर पर

नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया ज्योत राखी ता तू जग मया मन चाओ भया प्रभ्यागम सुनया हर मंगल गाव सखी गृह मंदिर बनया हर गाव मंगल नित सखिए सोग दुख न व्या पाए गुर चन लागे दिन सपागे अपना पिर जा पाए अपनी अपना पिर जा पाए अनत बाणी गुर शब्द जाने हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आपिरिया करण कारण जोगो ए श्रीरा मेरिया इस जग मैं आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग मैं आया जिना तेरा रचन रचा सो हारे मन न वसाया गुर प्रसाद हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक हो शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तो मैं जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलया देव दृष्ट होए ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनने नु पठाए साचा सुनने नु पठाए श्री रिलाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी साचे लख विडाणी ताकि गत कई ना जाए कह नानक अमृत नाम सुन हो पवित्र हो बहो साचा सुनने नु पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए पावनी एक ना दसवा

जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय।

जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावें मार अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई

जहाँ हारु सिमरन पया तह उपाद गत किन्नी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी।

वाहिगुरु जी, वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। थोड़ी और कर दूँ।

परमात्माय सतगुरुय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तुम माहि मिटावो। सिमरो जास बिसंभुरु एकाय, नाम जपत अगणत अनेकाय। वेद पुराण सिमरत सुधाख्या रहो, कीने राम नामिक आख्या रहो। किनका एक जस जी बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवै। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम रहाओ। प्रभु का सिमरन गर्भ नाम बसाए, प्रभु का सिमरन दुख जम नसाए। प्रभु का सिमरन काल पर हराए, प्रभु का सिमरन दुश्मन टराए। प्रभु सिमरत कछ बिघन ना लागाए, प्रभु का सिमरन अंदन जागाए। प्रभु का सिमरन पौ ना व्यापै, प्रभु का सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साध, प्रभु का सिमरन साध कै संग सर निदान, नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिस नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ सुनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होय सो भलाव, प्रभु कै सिमरन सुफल फलाव। से सिमरै जिनि आप सिमराए, नानक ताकै लागा उपाय। प्रभु का सिमरन सबते उच्चा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभु का सिमरन सबके सुझाए। प्रभु का सिमरन ना ही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु काओ सिमरह से तनवंते, प्रभु काओ सिमरह से पतिवंते। प्रभु काओ सिमरह से जन परवान, प्रभु काओ सिमरह से पुरख प्रदान। प्रभु काओ सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु काओ सिमरह से सर्व के राजे। प्रभु काओ सिमरह से सुखवासी, प्रभु काओ सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिनी आप दयाला, नानक जन की मंगाय रवाला। प्रभु काओ सिमरह से पर उपकारी, प्रभु काओ सिमरह तिन सद बलियारी। प्रभु काओ सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु काओ सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभु काओ सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु काओ सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभु काओ सिमरह तेन अंध कनेरे, प्रभु काओ सिमरह बसहि हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी। प्रभु कै सिमरन ने चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन। प्रभु कै सिमरन अनाथ झुनकार सुख, प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरै से जन जन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच औकुंठ जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सोत मीत न भाई, मन गुहा नाम तेरा संसाई। जय मां भयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलाए। जय मुश्किल हो वह अत भारी, हर को नाम खिन माही उधारी। अन पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सुख नेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंध न पराय, हर का नाम जपत निस्तराय। आनक माया रंग तिक ना बुझावै, हर का नाम जपते आकावै। जे

ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधकै संग जे मार के गनि जाहि न को सार का नाम हुआ संतोषा जे पैंडे महंत गुबारा हर का नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा कोना सिया नू हर का नाम तय नाल पछानू जय महाभयान तप्त बहु काम तय हर के नाम की तू मुख परशाम जह त्रिखा मन तुझे अकरखै तह नाम का हर हर अमृत बरखै

अष्टपदी दास बस्तुले पाछे पावे एक बस कान बिखूट गवावे एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कौ कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सदनम सकारा जा के मन लागा प्रमीठा सर सूखता हूँ मन गुठा जिस जने अपना

बहुर उसका विश्वास न हो वह जिसकी बस से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के स्तर पर होवत जान अनेत बिरह की छाया सो रंग लावे वो बिन से मन पुछतावे जो दिसे सो चालनार लाटरे उते अंधंधार बुटाऊ सो जो लावे ने ता को हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान आस्त्र भग साध की सरन नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरहे मिथ्या नेत्र पेक्त पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार काओ तावह मिथ्या मन पर लोभ लुभावह मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम लहे व्यर्थी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रिथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम जो किरपन के निरार्थ दाम धन धम ते जन जे घट बस्यो हर नाव नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कश्यवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जन नहार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न कराय आवत जावत जन्मे मराय जिसके अंतर बसाय निरंकार तिसकी सीख तरह संसार।

अष्टपदी जय प्रसाद सत्य अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसह सुख मंदिर तसह तिहाई सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई तिहावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर ढाव है तसह त्याग कातेवर लुभाव है जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तू सब को मन मुक्ता को जस रसम बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्राव जी जब दरगह मान पाव है नानक पात सेती घर जाव है जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावह तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कह जे प्रसाद त्रि सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद या भूखन पहरी जे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जे प्रसाद हस्ता सवारी मन तिस प्रभु कहु कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिर्ख तना राग प्रोए प्रावे अपने मना जन तेरी मन बंत मनाई उठ बैठ सत सह त्याई ते सह त्याए जो एक लख हुआ नानक तेरी रख जे प्रसाद करहे पुन्न बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गौर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद देखे बिस्मा जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभ त्याग वरकत लागो हो गुर प्रसाद नानक मन जागो हो जे प्रसाद तू प्रग संसार तिस प्रभ कौ मूल न मन हो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप प्रेमन मूर तू ताको जाप जे प्रसाद

नानक जा जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गाओ, आप प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी माया, पहु कछु न किन्हु लया, जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ।

ते तब ख्यान है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंची ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक सबिन को नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल आलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौसो ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवन ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक ज्यों वसुधा को खुदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नियन नानक जो पावक का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जिला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपाए सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग

कै मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी स्कर प्रव्या, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बाढ़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नान, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माह, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाया दाख्यर। ब्रह्म

का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब उपरहात, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आपनकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बनी नानक, ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक।

मन तन नाम रति करंग सदा बसै पार ब्रह्म का संग ज्यों जल मैं जल खटाना त्यों ज्योति संजो समाना मिटकै गमन पाए विश्राम नानक प्रभु का सर कुरबान सलोका सुखी बसा मसकीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ करे अष्टमदी जिसका अंदर राज अभिमान सो नरक पाती हूँ सुवान जो जाने मैं जो बनमंता सो हो बदविष्टा का जनता आप सको करम अंत कहाव जन्म मर बजून मरमाव धन भूम काजू कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसाव नानकिया मुक्ता की सुख पाव तन मंता होए कर कृपाव तृण समा का संग न जाव बालिष्कर मानु कूपर करे आस पल पीतर तांका हुए विनाश सब ते आ जनी बलवंता खिनमै हुई जाए पसमंता किसै न बद आप अहंकारी धर्म राय ते करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटी अभिमान सुजन नानक दरगह परमान कोट कर्म कर हंतारी श्रम्भा भी सगले मृतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर भरे अवतार अनक जतन करे आत्म नींद्रवै दरगी को कैसे गवै आप सगो जो भला कहावै तसे भला ही निकट न आवै सर्व किरेन जाका मन होए कौ नानक ताकी निर्मल सोए जबला जाने मुझते काशोए तब सका सुख नाही कोए जाबे जाने मैं के करता तबला गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीता तबला निचर नाही जीत जबला मोह मगन समाए तबला तरमरा दी सजाए प्रभ कृपाति बंधन तुटा गुर परसा नानक हों छूटा सहस खटी लाकूट तावा तृप्त ने आवी माया पाछी पावै अनक भो बिखिया की करै नै तृप्तावै खप खप मरै बिना संदो नहीं तू राजा सपन मनो बृते सब काजै नाम रंग सर्ब सो हुई बड़पागी किसै बराबत होए करण करा मन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करा मन करण हार इसका हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुई आपे आप प्रभु सोए जो कश गिनो सो अपने रंग सबते दूर सबका संग पूजा

मिट है पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्ण श्रवण हर कथा हर दरगह नान कूजल मथा बड़भागी तेजन जगमाहि सदा सदा हर के गुंगाहि। राम नाम जो करहे विचार से तनवंत गणी संसार मंतन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक पछाने तुतकी सो जी जाने नाम संग जिसका मान मानिया नान तने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुझाए। तिस की जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कैत सर्व रोग ते हर जन रै। अंधन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह न लागह दुख। जिस कौ हर ब्रह्मन चित आवै सो सं सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभु अपना कृपा करै सो से कहो किसते डराए। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य मह आप समाया सोदत सोदत सोदत सी जिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल। नानक सो सुखम सोई अस्थूल नै किश जन्मै नै किश मराए अपन चलित आप ही करै आवन जा दृष्ट अमृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सकल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही कुछ केश खंड धारण धारे ओ ब्रह्मण। अलख पे पुरख प्रताप आप जपाए तन अनक जाप जिन प्रभ जाता सुशोभा वन सगल संसार उदरैतन मन प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसार नि आपे मेल लय कृपाल। गुर का शब्द जप है नयाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ भागे नाम जपत पावह विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुपाए होवै सो हे करणे हार पछाण है सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तस्माहे समाए हुए सुख निदान उन्हू बनवाए।

करहै भगत आत्म कह जाए प्रभु अपने सो रहे हिस माए जो हुआ वो सो जाने प्रभु अपने का हुकुम पिछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभु बसह हजूरे कहु नानक सही जन पूरे।

ते कहो तुम कवन सुना था। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी।

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गावो प्राण तरन का है सुआओ आठ पैर प्रापे खो नेरा मिटाय ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पलत दुइले हो सवार राम नाम यंत्र उर तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसाय साच परिखिया मंत्र नाम जपव लेवलाय दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एक काटेक रखो मन माहे नानक बहुर ना बह जाए ਦਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਉਬਰੈ ਰੱਖ ਨਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁਚਨਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसाय सो